0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: अरिश्वा, आज तू इस पे साइन करेगी।
2: ये क्या है?
1: एक्चुअली ये एक एग्रीमेंट है कि स्कूल खत्म होने के बाद तू और मैं शादी करेंगे।
2: कुछ भी।
1: सी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज यार इस पे साइन कर देना।
2: कुछ ये लगा दिया। हैप्पी।

0: friendship bands?
1: Actually, मुझे तुम्हारा favorite color नहीं पता था, तो मैं हर color का एक friendship band ले आया।
0: लाओ दो, ये लो।
2: मैं

नागिन नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्सा है थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज दिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: कृषि विकास बैंक
1: तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक।
2: आईएमई रेमिट देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर वन रेमिटेन्स कम्पनी।
3: आईएमई गरौं